रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, ना सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं।

0: ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू। खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: Chinar Beats with Harsh Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ियूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM मैं हूं और जिस सब एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप। जी हां दोस्तों, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। म्यूजिक का मेला रेडियो चुनाव, हर दिल की धड़कन से रहा।

0: Kom her, ja.
1: Orası Frequency, orada giderken ne yapın? Joyker, Mazdar, Show,
2: WhatsApp.
1: Show, WhatsApp, or WhatsApp, show me, mein hoon, aapke safar ka, hum safar, aur chiz, sab dopahar ke, bhai, bhai, stein, we are together, I'm in the studio, aapke sunne ke liye, apne sunhane ke liye, aur aapke kahi sab tak pahunchane ke liye. Region aur har dil ki dhadkan aur hai, is dhadkan ko dhadkate hain aap. जी हाँ दोस्तों, हर दिल की धड़कन को और जोर से धड़काने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर, 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चनार 90.4 एफएम. आप डीएम भी कर सकते हैं, डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से. व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो के ढेरों सेगमेंट्स, और फिलहाल के लिए ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर.
3: Radio Chennai, Radio Radio Chennai, weather update, weather update.
1: यहाँ कैसा होगा आज का मौसम, क्या होगा gloomy gloomy या होगा awesome, चलिए बताते हैं.
3: Radio Chennai, Radio Radio Chennai, weather update, weather update.
1: यहाँ मौसम आज awesome होने वाला है क्योंकि बादल ढकने वाले हैं सूरज को, साथ ही साथ गरज बरस की भी संभावना है. And it's going to be a partly cloudy day for today. मगर ओबराश्त दामते है कि रसित कल के मुकाबले 2 डिग्री कम. आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस.
3: रेडियो चिनार वेदर अपडेट.
1: बादल धीरे धीरे सूरज को घेरने की कोशिश तो करेंगे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स नथिंग लाइक इंटेंस, बट यस देयर कैन बी शावर्स बाय आफ्टरनून.
3: वेदर अपडेट.
1: UV index moderate per, humidity 39%, wind speed 5 km per hour, visibility 14 km, sunrise hua 5:20 per aaj aur sunset hoga 7:44 per. Ji haan, agar aap bhi udna chahte hain to udiye Radio Chennai ki hottest frequency ke sang, kyunki on air musical vibes aur aapke dilon ki dhadkan saath goonjti hai. मैं हूं जॉक्स, आप सुन रहे हैं मजेदार शो. व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर. हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें, स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडियो चुनार सही है मेरे यार.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: 코너요.
1: 주스. 주스. 주스.
2: 허들기덜건 라디오 채널 90.4 FM 엔조이 카레 마스터 쇼. What's up? What's up show में वक्त हो चला है आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए जी हाँ टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं टॉपिक जिससे रिलेटेड आप अपने व्यूज इमोशंस थॉट्स हमारे साथ शेयर करते हैं टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको हमारे साथ मुनीर जुड़े हैं मुनीर लिखते हैं सर शो में पहली बार शिरकत कर रहा हूं उम्मीद करता हूं कि मेरी मैसेज जो है शामिल प्रोग्राम जरूर की जाएगी वाह इतनी गाड़ी उर्दू मतलब कतई माइक्रोफोन जो है फंबल मार रहा हूँ इतनी मतलब जबान के तो मतलब विश्रु गोजे भी इतनी गाड़ी उर्दू थैंक यू सो मच मुनीर और आपकी मैसेज जो है शामिल कर ली गई है थैंक यू सो मच वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए मुदसर हमारे साथ जुड़े हैं लगते हैं मुदसर सर आपका शो अच्छा लगता है थैंक यू मुदसर मेरे भाई मेरे दोस्त शबनम हमारे साथ जुड़ी है लिखती हैं शबनम सर आपकी आवाज़ अच्छी लगती है काश मेरी आवाज़ आप जैसी होती मतलब शबनम की आवाज़ इतनी भारी है वो अजीब नहीं कमाल करते हो मतलब मांग भी लेते हो तो देखकर मांगा करो मतलब सुबह उठी शबनम तलाई में दी चाय ऐसा थोड़ी अजीब लगेगा यार गॉड ब्लेस यू विद वॉट यू हैव एंड गॉड ब्लेस यू विद ऑल योर ड्रीम्स टर्निंग इन टू रियलिटी शबनम थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू रेडियो चैनल व्हाट्सएप शो में आज हम बात करने वाले हैं गर्ल पावर गर्ल्स की अचीवमेंट्स और किस तरह से एक नारी अपने साथ साथ पूरी दुनिया को चमकाती है क्या होता इस दुनिया का अगर एक नारी नहीं होती क्या होता अस्तित्व क्या होता वजूद क्या ये दुनिया चल पाती जी हाँ चाहे आपकी जिंदगी हो आपका घर हो या आपका सफर हो एक लड़की ही है एक नारी ही है जो इसे सुहाना

में आती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके लाइफ पार्टनर के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। सच में इस दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है अगर ये गर्ल पावर हमारे साथ ना हो। सो टुडे इज दिस टॉपिक इज डेडिकेटेड टू एवरी गर्ल आउट देयर हुज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस लिटिल वर्ल्ड टू रॉक इट अप एंड टू मेक इट शाइन मोर। मैं हूं जॉक्स, यू स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, दरकाते रहो मेरी जान।

Wie der Junge. King Khan. Ja, ja, Hanni, sind wir.

0: आपको यहाँ देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है।
1: हमें आना ही पड़ा।
2: जहां पना, आज पहली बार आपकी प्रजा ने आपका प्यार और अपनापन महसूस किया है, और इसलिए आज ये आवाम गुस्ताखी की माफी चाहते हुए आपको नवाजना चाहती है।

0: यहाँ दोस्तों हॉट स्ट्रीकेंस ही हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है गर्ल पावर की। व्हाट्सएप शो पर आज का टॉपिक गर्ल पावर। आप भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं याद रखिए 8899-04904 इज द नंबर। डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, सर्च कीजिए ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। आईडी पर डीएम करके आप हो सकते हैं शो में शामिल। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल स्टे हुक्ड, धड़काते रहो।
1: हथी वीरा ताली बजेगी ओए माथे बिंदी पैरा में दी लाली सजेगी।

0: to Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद तो बहुत डर लगा है हे वैष्णो देवी अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: स्यापा।

इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगला पड़ाव टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। यहाँ जरा सा इंतजार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मैं हूँ जॉक्सिस, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन से धड़काते।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: नशा सिर पे चढ़ के बोले, मूव योर बॉडी हौले हौले, बिना पंख उड़ के अब उस पार जाना है।

0: Zeus.
1: Kon ayo.
2: Excuse
3: me, sir. सर एक प्रॉब्लम हो गई
4: क्या
3: की मॉडल नहीं आ रही
4: क्यों
3: सर आपके मोबाइल पे उनका फोन आ रहा है वो नहीं आएगी
4: ला फोन दे
5: मित्रों तुसी भांगड़ा पाते रहो एंड इट्स माय टाइम टू साइन ऑफ फॉर द डे जा रहा हूँ आज के लिए कल फिर से 9:30 से 12 तक होगी मुलाकात मैं जा रहा हूँ आ रही है पक्की कनक

Beats on repeat, show चुनाव बीस अब enjoy कर रहे हैं on radio चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक fun, entertainment. और क्या कुछ नहीं आता बस. देखिए मैं आ गई हूँ, शो का दस्तूर ही ये है कि ये फितूर है और प्यार है, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का हजूर, बन जाइए शो का हिस्सा, सुना कि कोई मजेदार सा किस्सा. देखिए कितना सारा राइमिंग हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो वाइब एंड ट्राइब है ना, इट्स सो मुझे बस ऐसा लगता ना कि बस बातें करूं और कहीं ना जाऊं, क्योंकि आप है, मैं हूं, तभी तो है हमारा शो चुनाव बीस. सो हमेशा की तरह क्या था न्यूजुअल, क्या चीज़ें हैं जो आपको सच में चाहते आपकी वहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक रेडियो चुनाव की आवाज़ पहुँचती है और आप सच में कन्वे करना चाहते अपनी कुछ ओपिनियंस, थॉट्स, दिल.

से रिलेटेड कोई बात आए रे, दिल की बात आए ना तो हाय मजबूर हो जाते हैं कि दिल से मजबूर, और वो कहते ना कि दिल रोकता नहीं है, बस हम लाख छुपाए लाख रोके पर रुके ना रुके, और रोक नहीं क्यों है, मैं तो कहती हूँ मेरे साथ बात करो और जो भी आपने दिल में छुपा है दिल मत रखो, मेरे साथ शेयर करो। अब मेरे लिए तो यही है कि आप है मैं हूँ वाइब ट्राइब है भैया जी, उससे परफेक्ट क्या हो सकता है और उससे भी बढ़िया परफेक्ट है वाइट वाइट। बिल्कुल मैं तो वेट ही कर रही हूँ आपका बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चनार 90.4 एफएम, क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन। मेरे दोस्त हक्स।

Beats with Harshadeva only on Radio Chennai 90.4 FM.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

Beats aur Repeat show Chunar Beats ab enjoy kar rahe honi on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein ho rahi hain and we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir. नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, बोथ साइड से जो ट्रैफिक है दैट्स बीइंग स्मूथली इन बोथ डायरेक्शंस थ्रू. अगर हम देखें तो ओकेजनली टेम्प्ररी डिस्ट्रप्शन हो जाता है कई कई जगहों पे ड्यू टू लैंडस्लाइड्स. और ज़रूरी है कि हमने पता हो कि लैंडस्लाइड्स हो या फिर कभी कभार जो है हम सडनली कोई ऐसी मैसेज आती है या ट्रैफिक रश होता है, वन में ट्रैफिक होता है और हमें पता हो कि कहाँ से जाना है, कौन सा रूट अपनाना है और वो हमें पता लगेगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो गाइडलाइंस हमें दी जाती है. सो जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ही आप अपना प्लान बनाएं और तभी आप अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत ही आराम से जा सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आराम से गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं एंड ऑल्सो गलत जगह पर ओवरटेक करने की गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फिर वही है कि भैया जी हम कुछ और सोचते, कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते और वो नहीं बनना है, हीरो बनना है, जीरो नहीं. ट्राई करना है कि लाइफ में कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने लोगों के लिए.

अपनी फरारी के साथ मैच करवाए, बट ये है कि हमें पता हो कि हमारे रोड के साथ क्या मैच जाता है, और वो है हमारी ड्राइविंग एसओपीज़। हमें पता हो कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग एसओपीज़ का क्या काम है। बताइए शो कैसे बन जाइए, कुछ आपका एक्सपीरियंस 8999904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सअप कीजिए, शो चुनाव बीच का हिस्सा बन जाए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats ve Darce Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार, बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम। डी सारी बातें हो रही हैं एंड पर्टिकुलर टॉपिक क्या है और आज किस पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसपे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी वाइब ट्राइब है। एंड हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड, जी हाँ बॉलीवुड के बारे में। और बॉलीवुड के बारे में यूँ तो हम कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है, मूवीज आने वाली होती है, या फिर किसी स्टार के रिलेटेड कोई भी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कि शादियों का सीज़न है और शादी में बैंड बाजा बारात तो होता ही है, लेकिन बॉलीवुड की शादियों का ना एक अलग ही क्रेज़ होता है। अब देखें तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, इंतज़ार रहता है कि कौन सा कपल कब शादी करेगा और स्पेशली क्या थीम है, यानी कि उनकी जो वेडिंग है वो कैसी होगी, एस्थेटिक होगी या फिर फुल ऑन कलर्स से होगी या जो भी चीज़ें होती है। हर एक बॉलीवुड कपल का एक हर एक फ़ैन को इंतज़ार रहता है, लोगों को इंतज़ार रहता है कि आखिर क्या इनकी वेडिंग में खास होगा। पर आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हमारी डेली लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम देखें तो हमारी शादियां भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से डिसाइड होती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करते हैं या फिर उनके मुताबिक ही फिर वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बिकॉज वो उनके फ़ैन होते हैं। जी हाँ, फ़ैन होते हैं, उनकी हवा फ़ैन होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये फ़ैन बेस जो होता है ना, ये काफ़ी क्रेज़ी होता है। तभी तो शादियों में भी हम देखें तो फैशन से लेकर ग्लैमर से लेकर ओवरऑल जो थीम होता है या फिर बजट जो रहता है शादी का, डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर ओवरऑल अगर हम देखें बॉलीवुड की शादियों का ना एक अलग ही क्रेज होता है और इंतज़ार भी होता है। स्पेशली दिसंबर से लेकर फेब तक मोस्टली शादियां होती है बॉलीवुड में, और इस साल कौन सा कपल शादी करने जा रहा है और ऐसी खबरें क्या है, रूमर्स क्या, इन सब बातों में इंसान इतना उलझ जाता है। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो चुकी है अभी बॉलीवुड से, और बॉलीवुड की शादी होना बड़ा ही मजा ही अलग है।
1: मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी कर लेते।
0: जी हाँ, बदतमीज दिली ट्रैक अब एंजॉय करेंगे फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। अब दीवाने तो हम भी है बॉलीवुड की शादियों के, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको किन की शादी बहुत ही अच्छी लगी या किसकी शादी का इंतजार है। 8 8 9 0 4 9 0 4 टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार भी इसका हिस्सा बन जाएगा।

Jeremy. Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

बीट्स और रिपीट शो चुनाव बीट्स अब एंजॉय कर रहे होंगे ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम डी सारी बातें हो रही एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यस वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड वेडिंग क्रेज। देखिए बॉलीवुड की वेडिंग का तो काफ़ी क्रेज होता है, उससे भी ज़्यादा क्रेज होता है कि कौन किस डिज़ाइनर का लहंगा पहनेगा, यानी कि क्लोथ्स का डिज़ाइनर की जो इंस्पिरेशन होते हैं स्पेशली सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बॉलीवुड ही नहीं बहुत सारे लोग जो एक्चुअली दे आर लाइक कि हमारी वेडिंग पे हमने डिज़ाइनर लहंगा ही पहना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉलीवुड की थीम्स जो वेडिंग में होते हैं किस वेडिंग से क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा कि अनुष्का और विराट की वेडिंग इट वाज वेरी डिफरेंट और तब से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो एस्थेटिक या फिर पिंक पेस्टल ये कलर्स काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को हमें मिल रहे हैं वेडिंग्स में। और उसके बाद लगातार अगर हम देखें डिफरेंट स्टाइल्स डांस

एवरीथिंग कुछ ऐसी चीज़ है जो हमने पहले तो नहीं एक्सपेक्ट की थी कि हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो अगर हम देखें वाइब्रेंट कलर्स जो भी है, जो कहीं ना कहीं रेड ग्रीन मरून ये सारी कलर्स कहीं ना कहीं दूर जा रहा है. अभी बहुत ही कम देख रहे हैं वेडिंग में ये कलर्स कोई पहन रहा है, बट यही है कि अगर हम देखें तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड से स्टार्ट किया गया ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड बन चुका है हमारी डेली लाइफ में भी. आज हम प्रेफर करते हैं कि हम कुछ लाइट कुछ पेस्ट कुछ गोल्डन यही सारे कलर्स चूज करें अपनी वेडिंग के लिए. और उसके अलावा भी अगर हम देखें कि कोरियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, संगीत मेहंदी सॉन्ग स्टेप्स ये सारी चीज़ों को काफ़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं फैंस और उन चीज़ों को फॉलो भी किया जाता है अपनी वेडिंग्स में. उसको मद्देनज़र रखते ही हम आज अपनी वेडिंग में उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं सो दैट हमें ऐसा लगता है कि अब कम्प्लीट हो चुका है. देखिए ट्रेंड बॉलीवुड ने किया है लेकिन फॉलो हमने भी करना है बस. अब आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी सी फैमिलीज़ देखी है या लोग आपके मुताबिक कितना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं वेडिंग का, जो अगर हम देखें थीम से लेकर शादियों में हर एक चीज़ होना, वो चीज़ कहीं ना कहीं कितना इन्फ्लुएंस करता है आज हमारे घर में शादियों को, आप बताइए. शो का हिस्सा बन जाए आपके थाट्स क्या है 8999-0409-04 पर आप कॉल कीजिए टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो चिनार बीज का हिस्सा बन जाइए.

0: बीट्स ऑन रिपीट।
1: बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे थे ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हमने की एंड स्पेशली वी वर टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड वेडिंग क्रेज, क्योंकि हम सबको ही पता है कि हर एक बॉलीवुड कपल जो भी अभी डेट कर रहे हैं या जिनके रूमर्स अभी काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं कि भैया जी ये लोग शादी करने जा रहे हैं, और हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है ये कौन सा थीम फॉलो करें, कौन सा ट्रेंड अभी सेट होगा, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं सो दैट वो अपनी शादी में वैसा ही ट्रेंड फॉलो करेंगे। आई एम श्योर कि शादियां और शादियों में थीम अभी काफ़ी ज़्यादा भी मॉडर्नाइजेशन या फिर हमारी वेडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हुई है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड की वजह से, जो बॉलीवुड के थीम के मुताबिक ही होती है, और हम भी चाहते हैं कि हमारी शादी भी उसी थीम के अकॉर्डिंग हो। बात हो रही थी, आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं शो का समझना चाहते हैं 8888-9904-904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, बट अभी के लिए आप अपनी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8888-9904-904 पर आपने कॉल करनी, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए। डे ऑन डेट से लेकर 2 बजे तक आप इस आधे घंटे में अपने फेवरेट ट्रैक सुनते हैं रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर, तो जल्दी कीजिए शो का हिस्सा बन जाइए 8888-9904-904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।
2: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए।
3: नंबर 1 मेड इन चाइना राजकुमारी चुल कुमारी गुल गुलू

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हिना की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप इंजॉय कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड अभी चल रहा है और पहली रिक्वेस्ट हिना की है, आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर। आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में अपनी रिक्वेस्ट शामिल कर सकते हैं और शो को इंजॉय कर सकते हैं।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए नागिन तो नहीं आ सकती, वो नागमणि के साथ बिजी है, पर मैं आ गई हूँ लेके शो हंगामा, आरजे असरा हंगामा होगा बराबर चार तक।

शुरू हो चुका है हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और देखिए आज का आते आते ही थॉट, एंड कहते हैं ना थॉट ऑफ द डे, अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट कभी कभी आप दिन में कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि नहीं ये मैं अपने लिसनर्स को जरूर बोलूंगी। और आज का थॉट यही है कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक अ लेमनेड। ये तो आपने सुना होगा, पर इसका एक अल्टरनेटिव वर्जन है, इफ पीपल कॉल यू नागिन, मेक अ सॉन्ग आउट ऑफ इट।

अभी तो आप हमारी वानी और जो इनकी जो बीन है वो तो चलती रहेगी, पर हमारी भी जो वानी है और जो हम बात करने जा रहे हैं बराबर 4 तक चलेगा। और आते आते ही, जैसे कि आप मालूम है हमारी परंपरा है कि आते आते ही कुछ न कुछ क्रेजी सम पीपल लव ट्रैक्स प्ले होते हैं। Definitely, I gotta say what I gotta say. And अभी यही कहना है मुझे कि आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8899-9904 is number, आप जुड़ सकते हैं and बन सकते हैं शो का हिस्सा। अपने thoughts अभी afternoon में, आपको नींद तो नहीं आ रही क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत ऐसी मधुर नंदर चाहिए वहाँ, मगर क्या करो, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आप सबसे भी बात करूँ। मैं मस्ट्रा सुनता रही रेडियो सुना 90.4 FM, और कुछ ही ट्रैक्स के बाद वापस आके बात करेंगे कि फ्रेश फ्रेश क्या ट्रेंडिंग है। सुनता रही रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक अजी, शो है हंगामा, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन और अभी तो बात होगी ट्रेंडिंग क्या है। जी हाँ, जो फ्रेश ट्रेंडिंग है लोग देखना पसंद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो अभी एक्स है और जो कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इसके अलावा जो आजकल नए ऑन द गो, एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है बल्कि पुराना है, बट अभी काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है जिन्होंने ये डाउनलोड किया, यूज़ किया, दैट इज़ रेडिट। और हर जगह अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बात होती है और कौन सी रील, कौन सी मीम लोग देख रहे हैं।

कुछ एक ट्रैक है जो एक्चुअली 8 महीने पहले रिलीज हुआ था पर अभी ट्रेंड कर रहा है। देखिए सोशल मीडिया है ही ऐसी जगह, और हर बार मैं आपको यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी कुछ भी लोग पसंद कर सकते हैं। एंड दिस इज द ट्रैक, इट हैज़ गैदर्ड मोर देन 20 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब अलोन इट हैज़ ग्रोन लाइक 30 मिलियन प्लस। गाने का नाम है तार तार, सिंगर है वतन साही एंड जासमीन अख्तर, एंड टोटली टॉकिंग अबाउट जो ये गुलनाज अख्तर है एंड जासमीन अख्तर है, ये जो भी दे आर सिस्टर्स एंड दे आर डूइंग सो वेल इन द पंजाबी पॉप कल्चर म्यूजिक, एंड मोर ओवर बस अभी तो सिर्फ पंजाबी चल रहा है हर जगह। और ऑनेस्टली एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया क्रिटिक्स ने बताई है, आगे पोर्ट्रे किया है कि अभी के टाइम पे ट्रैक्स में चाहे लिरिक्स कुछ भी हो और कैसे भी हो, राइम करे ना करे, रदीफ काफिया मिले ना मिले, बट एक जरूर चीज मिलनी चाहिए, वो है वाइब और कंपोजिशन मैटर करिए। देखिए हर एरा का अपनी एक नीड होती है, अभी का एरा ऐसा है कि लिरिक्स से पे कम और बीट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ट्रांजिशंस हैं, रील्स हैं, पार्टीज हैं, एंड पीपल आर दैट वे राइट नाउ। और आप ही बताइए कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद है। धड़कन

सोनी और सोनी के नखरे सोने तो होंगे पर हमारे यहाँ सोने सिर्फ अपडेट्स होते हैं। और अभी वक्त है रेलवे अपडेट्स का। देखिए अपडेट्स जरूरी है क्योंकि एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स इन सब के साथ ही तो बनता है शो हंगामा। और अभी रेलवे अपडेट्स में यही अपडेट है कि जो भी ट्रेन शेड्यूल है दे आर शेड्यूल एज पर दर समर टाइम टेबल। और ज़रूरी है कि आप वो चेक कर सकते हैं इधर इन पर्सन किसी भी स्टेशन पे। आपको एक बिल बोर्ड मिल जाता है जिसकी आप अगर पिक्चर लें वो भी चलेगा, बट उसके अलावा आजकल सब डिजिटल है। सो इट्स बेटर क्या आप इंडियन रेलवे ऑफिशियल ऐप को कंसल्ट करें, दैट इज रेल वन। एंड इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे ताकि कोई भी अनहोनी ना हो या आपके प्लान में कोई डिले ना हो या आपकी ट्रेन ना छूट जाए। मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: ड्रामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Welcome back to Show Hangama, and you have tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM.
3: हंगामा ड्रामा पे अभी वक्त है 1 मिनट फैक्ट का, और आज का फैक्ट इतना अच्छा है ना कि हमें वो डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्माइल, यानी कि जो हम मुस्कुराते हैं एक्चुअली वो कंटेजियस है। और कंटेजियस का मतलब ये होता है कि जब कोई एक इंसान मुस्कुराता है तो ऑटोमेटिकली जो अगला इंसान उसे मुस्कुराते हुए इंसान को देख रहा होता है तो वो उसे मिरर करने लगता है। यानी कि एक इंसान से दूसरे तक ये पॉजिटिव एनर्जीज सिर्फ मुस्कुराने से फैल सकती है। And honestly, this is the best thing about societies, this is the best thing about social relations actually, कि जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो स्माइल करके बात कीजिए, मुस्कुराकर बात कीजिए, और अगर गिले शिकवे हैं तो वो उसी से दूर हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल। बिल्कुल नहीं, मुस्कानें झूठी नहीं है, मैं बता रही हूँ कसम से। मुस्कानें और मुस्कुराना, स्माइल, लॉफिंग, दीज आर समथिंग, दीज आर द थिंग्स दैट एवरीबडी नीड्स। पर देखिए

गाने से जो गाना याद आता है, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ट्रैक्स दैट हैज अ डिफरेंट वाइब, इट हैज अ जैज जॉनरा वाइब, और बॉलीवुड में ऐसे गाने बहुत कम मिलते हैं. सो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

दोस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

देखिए कोई आए ना आए, पर मैं तो आ गई हूँ और अभी वक्त है कि हम आप तक पहुँचाएं कि क्या है आज का टॉपिक. और हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और आज का टॉपिक इज रिलेटेड टू बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज. और कैसे ये जो ओकेजन्स होते हैं हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. हमारी फैमिली के साथ जो कनेक्शंस होते हैं, हम पूरी 12 बजे रात तक वेट करते हैं उस स्पेशल इंसान को, उसका बर्थडे विश करने को या एनिवर्सरीज पे विश करने को. तो ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात भी करें. तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा और आप भी बताइए क्या व्हाट डू यू फील अबाउट द बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.
0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पजामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। जैसा कि आज हम बर्थडेज एंड एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, पर दिस इज द रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899904904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप।
1: तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई।
2: एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार, क्योंकि एड फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो सुनार सबसे ज्यादा।
1: मैं इंटरनेशनल, तेरे गाने मेरा लोक, तू है सेक्सी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। और जैसा कि आज हम बर्थडेज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हैप्पी बर्थडे टू यू जी। और देखिए, हम हमेशा एंड ऑनेस्टली देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इन सब गानों पे अपने दोस्तों की, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की, लव्ड वंस की स्टोरीज अपलोड करते हैं, क्योंकि आज तो बर्थडेज पूरे नहीं होता जब तक कोई विश ना करे। भाई एमकुर ने विश की ही मन करने में सिद्ध काट के या करने में सिद्ध मन एमसन स्टोरी खा लो क्या। And that is very common right now. But अगर देखा जाए, main purpose जो birthdays का रहता है वो इसलिए है कि जन्मदिन होता है, इस दिन आप पैदा हुए होते हैं और आपकी जो एज है वो बढ़ जाती है। बट ये एक मौका में और एक बहाना मिल जाता है पूरी फैमिली के लिए कि वो साथ में बैठे, इस चीज़ को सेलिब्रेट करे और मेमोरीज के बारे में सोचे कि भाई जशी याद से क्या उस बचपन कुछ करा, एंड इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। एंड आई फील दिस इज सो होलसम फॉर एवरीबडी। इसके अलावा अगर बात करें एनिवर्सरीज़ की, तब भी एक स्पेशल मोमेंट होता है याद करने का कि इस दिन क्या हुआ था। अगर हम वेडिंग एनिवर्सरी की बात करें या हम किसी और चीज़ एनिवर्सरी की बात करें, या इतने साल हो जाते हैं लोगों को साथ में, वो कंपेनियनशिप कंप्लीट करने को इतने साल, और सेलिब्रेट करना तो बनता है।

0: कि इतने साल किसी के साथ निकाल देना. और उसके अलावा बर्थडेज की बात करें तो स्पेशल गाना जो बचपन में हम सब सुनते थे और अभी भी कहीं ना कहीं ये गाना बरकरार है.
1: को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू.
0: और देखिए ये भी कहा जाता है बर्थडेज के बारे में, ये फैक्ट भी है कि अगर आपके एक रूम में 23 यानी कि 23 लोग हों उसमें से 50% चांस है कि दो लोगों का बर्थडे सेम होगा. और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपका किसी दोस्त के साथ बर्थडे मैच होता हो, डेट्स में सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर सेम हो? 8899904904 पर आप हमसे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं और अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं. सुंदर रेडियो सुना 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

welcome, Eddie, welcome. What is Frequency North Kashmir 90.4 FM pe. जी हाँ, शो है हंगामा और हम बर्थडेज एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं और हमने बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात की. पर देखिए, अभी इस बात बारे में बात करना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बर्थडेज और एनिवर्सरीज के नाम पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं. देखिए, खर्चा करना, प्यार जाहिर करना, लोगों के लिए कुछ करना, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करना बुरा नहीं है, बट फजूल खर्ची करना और बाकी लोगों के लिए एक पीयर प्रेशर क्रिएट करना वो सही नहीं है. और सेम इज़ द केस विद जब किसी की शादी होती है तो एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स में इतना खर्चा होता है तो जो आम आदमी है जो जिस बारे में शादी करने का सोच रहा है वो नहीं हो पाता मिडिल क्लास फैमिलीज से. और कहीं ना कहीं अगर इसके अलावा भी देखें, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं, हमारे रिसोर्सेज का सवाल है. जो आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स्ट्रावेगेंट बड़े बर्थडे बैशेस पे, वो आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बेटर कॉज के लिए. अपने लिए ही सही बट किसी बेटर कॉज के लिए. सो ज़रूरी है कि हम जाते जाते इस टॉपिक को एंड करते करते हम इस बारे में ज़रूर बात करें और आप भी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने क्या ऐसा कभी बर्थडे मनाया है जहाँ पे आपने फजूल खर्ची की हो, एनिवर्सरी मनाई है या कोई ऐसा फंक्शन ओकेजन रखवाया जहाँ पे आपने एक्स्ट्रावेगेंट होके वो चीज़ें करी हैं जो आपको ज़रूरत नहीं थी. और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए एंड सेलिब्रेशंस बर्थडेज को एक बहुत ही खूबसूरत ओकेजन बनाना चाहिए. और इस बारे में बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि हम फजूल खर्ची ना करें. इसने तो दिल की बात बोल दी, बिल्कुल. यू आर माई लव एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899-0494 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और अपने दिल के हाल हमें बताइए, क्योंकि वो चारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है रेडियो चुनार.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chunar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM.
3: हाय, मैं हूं अस्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, हम तो आपसे अनजान नहीं हैं, भले ही हमने गाना वैसा प्ले किया हो, बट देखिए हम आपसे जान चुके हैं। आपको हर रोज आते हैं एंटरटेन करने, तो आपको तो मालूम ही होगा अभी कौन सा वक्त है। अभी वक्त है गेम ऑन का, यानी कि स्पोर्ट्स अपडेट, चाहे लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल हो। स्टे ट्यून्ड टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी। कुछ ही ट्रैक्स के बाद बात होगी क्या चल रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में। मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार।

சுனா 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. Welcome back to Show Hangama and segment Game On. और आज का जो फैक्ट है, आज का जो अपडेट है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज जो हमारे बहुत ही रेनाउंड एक्टर आर माधवन हैं, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है एंड रिसेंटली ही हैज़ बिन नोन एंड फेमस फॉर एंड चर्चा में है वो बिल्कुल धुरंधर मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने के लिए. उनका जो बेटा है ही इज़ अ प्रोफेशनल स्विमर, वेदांत माधवन, एंड ही हैज़ नोन फॉर गेटिंग for India in professional swimming. तो इनके बारे में अपडेट ये है कि इनके जो बेटे हैं वेदांत, उनका डिसीजन है कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बिकॉज इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट फुटबॉल के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है. अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और इस बारे में आपका क्या कहना है वो जानने के लिए मैं यही हूँ.

चार बजने वाले हैं और अगर आप कहीं भी रुकने को मैं नहीं रुक सकती क्योंकि चार बजते ही हमारा शो खत्म हो जाता है, पर इस बात का वादा जरूर करूंगी कि कल वापस आऊंगी। देखिए जमाना जो भी कहे पर मैं कह रही हूँ कल जरूर वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन, और जाते जाते आप सबके लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक। एंड मोर ओवर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, मेमोरीज बनाते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

और जीसस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से

0: हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
4: 90.4 FM।
5: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी
1: सुहानी शाम,
0: कभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुँचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।